थक आए कर बंधना रखबार थक पर्यो प्रभु दरबार थक आए प्रभु की शाम चार कुंठ दस परमे जोन अनेक बिखे परम आयो आए अनेक जन्म परम शरणी लख 84 जुना परम दे से पाशाह तुम्हारे द्वारे आए हाँ आए अनेक जन्म

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्योहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो।

कत हूँ सुचे तुह के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हे फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं

कऊ देवतान के दीवान में विराजमान कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

दानी अकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कह रहा बने ता परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी है पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना किराया ते सतनाम भला हो जाए, तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैंने जाना पै रहा, पता नहीं हुण कईयां को की कुछ लिया नकली। कार्ड आ जाएगा ये ब्याह है जी मदद करो, असीं फिर बाबे दे आ खुल के कही गए तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो हाँ जी ब्याह है बच्ची का ब्याह है, उसी आप कथा की थी टैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए किन्नियां संस्थावां कोले कार्ड लैके मदद मंगणगे, जे सच दसेंगा तो आ 1300 पिया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई वार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना लिया, इथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो, ये तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है आर्थिक पक्षों कमजोर है ओदी बच्ची दा व्याह है, एक तो जरूर जा भावें 10 मिनट लई जा, तेरे जाण नाल ओदा माण वधेगा, एक ओनू 4 गुणा सगन भावें लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना, दो भरा सुनदे हो ना सूरज प्रकाश शिया गजण दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवे शिया गजण विआह सी ना शीए की कुड़ी का, वह बरात जदों आई सी तो उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कि नहीं उदो रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण तो रवाज बदलते जा। उन्हें कहा 7 दिन तो उन्होंने फिक्र लग गया सी आम चार सिख, कहिंदे जिन्ना इलाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों क्यों दोवें नाम जपण वाले सतनाम करना 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने बरात छकदी रही संगत छकदी रही तोट नहीं आई, संगत दौड़ गई सतनाम।

महारानी जो आज सत्संग विच आनंद आया है ओ राज गद्दी ते बह के भी जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही फिर प्यारी सास संगत राड़े राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गया स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा बल दिता कई तैन कहते ने अबला है पर मैं तो कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है तुसी तक लो ना स्त्री दो काराबाद कर दी स्त्री जो है ए दो कर अपने पिता का घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरिया का घर आदमी इको घर ही आबाद करता है अगो श्री वाहिगुरु ये विचार दी बात है फिर ये अंदर बल ज्यादा होया ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा माण बख्श स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी एदे अंदर ताकत पर थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा थोड़ी जी विचार चाहिदी है थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है तलखी विच नहीं आना चाहिदा जे पति गलती करदा है प्यार नाल समझाणा समझदे हैं समझे हैं तो पशु ही समझ आते आखो श्री भाई सुनते हैं सुनते हैं इंसान है तो मेरे कहण का मकसद स्त्री के अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया सत्संगी नहीं बनाया राजे नू धर्मी बना राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है ये वस्तु कितों मिली तेरी सात संगत ये सत्संग विचों मिली नाम विचों मिली तो आओ प्यारी सात संगत आप भी धन हो जो ओ सत्संग आप सारे जुड़े हो अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लैके आज सारा दिन नहीं वह यह है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए अमृत वेड़े भी कीर्तन गुरुद्वारे भी कीर्तन ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए कीर्तन हो जाए बड़ा महत्व है जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता फिर असि की करते हैं DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते बीमारी तो बच जाते हैं ते जिस घर च दुख कलेश आ जान बाबा जी बचन करते सन उथे कीर्तन हो गया खुशरी वाले बाणी का अमृत छिड़को नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा नस वजो किल विखो करता इथे गुरु आ जाए तो इन्हों बच्चिया ने बड़ा उद्यम किया बड़ी गुरु दी मेहर यंग हंदों में पर मैं तो कहांगा जवानी सफल नहीं तो जवानी मस्तानी होंगी जवानी एक ऐसा मोड़ है चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना चंगी गल तो करनी ही नहीं ना किसे गुरमुख ने लिखा भी एक जवानी दूजा धन पले फिर साई की मेहर हो सीधा चले नहीं तो डिंगा ही डिंगा तुरदा जाता है तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़ते हैं तो इन्हों बच्चिया ने उद्यम किया है इन्हों का उद्यम सफल सत्संग कराया है गुरु की बख्शिश प्राप्त की है फिर इन्हों उद्यम नाल आप सारे गुरु नाल जुड़े हाँ यह भी बड़ा पुण्य बाबा जी वचन करते सन किसी नु गुरु नाल जोड़ देना इस तू वड्डा पुन कोई नहीं है किसी नु तोड़ देना इस तू वड्डा पाप कोई नहीं तो इस परिवार ने जो कालना काली है तो गुरु बाबा बख्शिश करे आप अरदास करनी है इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु सदा मेर पर्यात राज जोग भक्ति शक्ति सारियां दातां गुरु बख्शे इन्हां दे उद्यम नाल आपां जुड़े हां सानू भी गुरु आप दे चरणां नाल जोड़ी रखे ते नाम बाणी दी दात
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

en el seu del bosc, que qui tan dismarti ardas hovegi hukm nama kada prasad di dek bachiyan valo gurmukh parivar valo jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anand sahib da paath sare milke kariye an guru nanak paatshah meherwan sadguru aap ji de pyar wale gursikh mai bhai साहब जी जिन्होंने आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी के दरबार ही जुड़ के आप जी के बख्शे खजाने सतगुरु आप जी के पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेद गाउंड अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

कुछ कोल सी वो खत्म हो गया है। पठान काम कदी कीता नहीं, तीन दिन हो गए खादा कुछ नहीं, मजदूरी करनी आंदी नहीं, मांग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है। पर गुरु साहब जी कहंदे ने दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु विधता। इंसान दुखी उदू हुंदा है जदों वो रब नूं भुला दिंदा है, क्योंकि रब नूं भुला के वो माड़े कर्म करदा है, विकारां विच पै जांदा है, फिर शरीर नूं रोग लग जांदे। ते जिहड़ा इंसान रब तों दूर नहीं हुंदा वो कदी दुखी नहीं हुंदा। दुनिया विच निगाह मार के देख लो कि चमक दमक वाले किन्ने क सुखी ने, असी लोग किन्ने क सुखी हां अपने अपने मना विच खुद देख लई। ए राजकुमार भुख बड़ी लगी, पैसा कोल कोई नहीं, मंग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है, पर कहंदे ने भुख बहुत बुरी। एक पिंड विच ए जिवें दाखल होया, किसे कुल मंगण दी हिम्मत नहीं पैंदी, एक छोटा जिहा कतूरा देखिया, उस कतूरे नूं इस युवराज ने चुक के कच्छ विच मार लिया कि किधरे अग मिले इनू भुन के खावा। मन कहंदा ए हराम है, ए नहीं खाना चाहिदा, पर पेट कहंदा हलाल है, क्योंकि भुख लगी हुई। पिंड दे बाहर आया, किधरों अग मिले इनू भुन के खावा। दूर सारे एक काफला नजर आया, उस पासे तुर पिया। इसने देखिया कुछ आदमी समान बनदे पए ने, कुछ नौजवान बजुर्गां दी सेवा करदे पए ने। ए उन्हां दे कोल जाके खड़ा हो गया, इस नूं खलोता देखिया। उस काफले विचों दो आदमी कोल आए, पुछ देने भाई कौन है तू, की चाहिए। ए पठान राजकुमार उन्हां दोनों आदमियां वाल देख के बड़ी हैरानगी नाल पुछदा है, तुसी गुरु नानक दे सिख हो, क्योंकि मेरे अब्बा हजूर क्या करदे सन कि गुरु नानक दे सिख सिर ते पग बनदे ने और ओ दाढ़ी भी रखदे ने, सिर दे वाल भी रखदे। तुहाडे सिर ते पग है, दाढ़ी भी है, कि तुसी गुरु नानक दे सिख हो। ओ कहन लगे हां भाई असी गुरु नानक दे सिख हां, पर तू कौन है। इसने अपनी सारी हालत दसी कि किवें मेरे चाचे ने राज बदले, मेरा सारा परिवार खत्म कर दिता है। उन्हां दोनां सिखां विच इक वैद भी सी, उन्हें अंदाजा ला लिया ये काफी दिनां दा भुख है। पठान है एक राजकुमार, जे मैनू कवां तू कईआं दिनां दा भुख है, इहनू बुरा लगेगा। सिख ने कहा खान साहब
ਕੁਝ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖੁਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਤੂਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ

सारी संगत रुकी, लंगर तैयार होया। एक पासे कीर्तन हो रहा है, एक पासे लंगर पक रहे है। उन्हां सिखां ने इस राजकुमार वास्ते खिचड़ी बनाई, जिदे विच देसी घ्यो पा के इनू खाण वास्ते दिती। कईयां दिनां दा भुखा सी, इह खिचड़ी खा रहे है। सारी संगत इहदे दुआले बैठी है, इह सारिआं दे मूंह वल देखदा है। सारिआं दे मूंह ते इसनूं प्यार नजर आया, अखां विच अपनापन नजर आया। सारे इहदे कोल बैठे ने कि किसे तरह असी इहनूं खुश करिए, इहदी खुशी प्राप्त करिए, इह दुखी ना दिखे। खिचड़ी खांदा इह राजकुमार रोण लग पिया। इहनूं रोंदा देखिआ तां सिखां ने पुछिआ, ऐ युवराज की गल है, तेनू किसे ने कुछ कहा है, तू रोण लग पे है। ए राजकुमार रोंदा होया कहन लगा, नहीं, रोना इस करके आ गया, एक पासे मेरा सक्का चाचा जिन्हें राज बदले सब कुछ खत्म कर देता, और एक पासे तुसी गुरु नानक देव सिख जिन्हां नाल मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। ए तुहाडा प्यार देख के मेरी अखां विच अथरू आ गए। ए सुन के उन्हां संगतां ने कहा, ऐ युवराज ए ते असी हां, तू चल के देख, ओ गुरु गोबिंद सिंह बेकसारां दा यार, अनाथां दा यार, देखी तेरे नाल किन्ना प्यार करनगे। क्यों कि ओ सब नाल प्यार करदे ने, ओ जात पात मजहब नहीं देखदे, ओ तां जोत देखदे ने। इस राजकुमार नूं इह सारियां संगतां अपने नाल लै के उस बेकसां रां यार गुरु गोबिंद सिंह

करीम खान जदू गुरु दरबार पहुंचे मथा टेके हमेशा दी तरह गुरु साहबां दे सामने बैठ गए। सारी संगत नूं भी पता है कि गुरु साहबां दा वचन होया है करीम खान ने दसवें दिन अपना शरीर त्यागना है। करीम खान बड़े प्यार नाल कहिंदा है हाथ जोड़ के महाराज अज मेरा आखिरी दिन है पता नहीं किस वेले मौत ने आना है पर मरण तू पहला इच्छा है कि मैनू नाम दी दात दे दियो। गुरु साहबां कहा बच्चा नौ दिन किथे रहे कहन लगा घर नौ दिन तेरा ध्यान ती पुत्र वल माया वल गया कहन लगा नहीं नौ दिन मौत याद रहे उस खुदा वल आप वल ध्यान रहा कि मैं मर जाना। गुरु साहबां ने कहा परमेश्वर दी याद मन विच रवे चित विच रहे ऐसे नू नामदान कहिंदे। जदू ए बचन कीता करीम खान दे हाथ जुड़े ने अखा विच अथरू ता गुरु साहबां ने कहा करीम खान की गल मौत तों डर लगदा इस संसार ते कोई हमेशा नहीं रहा एक दिन सारिया मरना है। ता करीम खान ने कहा इस करके रोना नहीं आया कि मैं मर जाना इस करके रोना आ रहा है कि मेरा कोई नहीं सी पर तू बने है आज तू बाद मैं तेरे दर्शन नहीं कर सकांगा। साहबा ने कहा करीम खान रब दे प्यारे मर के भी रब तू दूर नहीं होंदे चरना ते मथा टेकिया करीम खान ने प्राण त्याग दिते ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने करीम खान दी उसे तरह ही अंतम क्रिया कराई जिस तरह पठान लोग करदे ने। ए है बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दे अपने पुत्र लड़ाई दे मैदान विच रुलदे रहे उन्हां दी परवाह ना कीती पर ओ करीम खान पठान है अपने पुत्रां तों वध प्यार दिता क्योंकि गुरु नानक दे घर जात पात नहीं जोत दिखी जांदी। कोई भी अवतार है कोई भी पैगंबर है ओ इंसानियत नाल प्यार करदा है जिहड़ा इंसानियत नाल प्यार ना करे ओ ना पैगंबर है।

0: पाठ योग की लोड़ नहीं है। जो करेगा हौली हौली हौली हौली सहजे सहजे उसके श्वासों के अपने आप नाम चढ़ जाता। नाम जो है श्वासों के प्रवेश कर देगा। धक्का करन की लोड़ नहीं है। हर्ष योग की तो लोड़ ही नहीं है। प्यार की लोड़ है, सबर की लोड़ है, संतोख की लोड़ है। सबर संतोख नाल सहज मते शांतमयी सहज मार्ग हौली हौली जो दीवान नाल जपेगा हौली हौली अपना उही अपना जड़ा है शब्द श्वासों में चलिया जाएगा। जो कोई मूल मंत्र भी जपदा ता भी वह जड़ा है श्वासों में चलिया जाता है। फिर योगी लोग तुसी सुने से कुंभक करते हैं। कुंभक नाम है रोकन का, श्वास रुकता है। जेडे सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, जवान नाल जपणगे, रटन करनगे, करते जाणगे, उन्हां दी अवस्था फिर यह आवेगी। श्वास श्वास नाम जपण की आवेगी, फिर अवस्था यह आवेगी हौली हौली उन्हां दे फिर जेडे जिवें जवान दे विच रस पैदा कर दिंदा सिमरन, इस तरह श्वासां दे विच भी जिवें श्वासां दी रगड़ पैदा होवेगी, इस दे विच भी एक अद्भुत आनंद, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत खिच, अद्भुत रस परमात्मा दा नाम पैदा कर देवेगा। उस रस दे विच योगी लोग तो हठ योग करते हैं, श्वास नूं रोकते हैं, कदे कढ़दे हैं, कभी कुछ हठ योग करना पैंदा है। जिहड़े गुरमुख हुंदे हन उन्हां दे अपने आप ही श्वास जिहड़े हन हौली हौली आउणगे, हौली हौली जाणगे। पर अभ्यासी सिमरन करन वाला वह है जो अपने प्राणां नूं अपने श्वासां नूं अपनी मर्जी नाल चलाउंदा है। इह तां वैसे तां चल रहे ने, जिस दे इह श्वास प्राण अपने वस विच हो जांदे हन। समाधि की है? जदों इह प्राण मन विच लीन हो जांदे हन, प्राण चंचल हन, प्राणां दी संगत करके मन भी चंचल हो गया। जदों इह प्राण मन विच लीन हो जाण, मन बुद्धि विच ते बुद्धि आत्मा विच ते आत्मा परमात्मा विच लीन हो जांदी है, उस नूं समाधि अवस्था कहिंदे हन। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों प्राण मन दे विच लीन हो जाण, मन बुद्धि दे विच, बुद्धि आत्मा दे विच, आत्मा परमात्मा दे विच लीन हो जावे, सिमरन अभ्यास द्वारा एकाग्रता द्वारा जदों इह अवस्था आउंदी है, फिर जिहड़ी है समाधि दी अवस्था आउंदी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिथे मन फुरने फुरने चिंतावां तां बहुत दूर रह जांदियां हन, फुरना भी जिथे नहीं उठदा। संकल्प विकल्प जो असीं पाठ करदे हां, वैसे बैठे भी हुंदे हां, कई बार संगत विच ही बैठे हां, फिर भी संकल्प फुरने फुरने आ ही जांदे। सोची जाऊगा घर बारे होर किन्ना कुछ सोची जांदा है। जो सिमरन करदा है भाई, प्राणा जाप करदा है, श्वास श्वास सिमरदा है, ते उस दा अपने प्राणा ते मन ते फुरनां ते कंट्रोल हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: एवें नहीं कोई कर सकदा मैं मन नूं काबू कर लां, नहीं, मन कोई पकड़िया नहीं जा सकदा। गुरु जी कहिंदे ने मन लोचै बुरियाईआं गुर शब्दी इह मन। गुरु दे शब्द द्वारा ही मुड़ेगा, गुरु दे शब्द द्वारा ही रुकेगा, गुरु दे शब्द दे रस दे विच पै के ही मन टिकेगा। सुखनी साहिब च गुरु जी कहिंदे ने ज्यों मंदन मंदर को थम्मै थम्मन ते गुर का शब्द मनाया स्तंभ। जिवें आपां पिलर खड़ा करदे हां उस दे उत्ते छत टिकदी है, इसे तरह कहिंदे जो गुरु दे शब्द दे आसरे द्वारा ही जो मन चंचल तो भी चंचल है, बहुत इसकी तीव्र गति है, मिनटां सकिंटां दे विच छिनां दे विच किते ते किते घूमदा बैठा किते हुंदा शरीर करके फिरदा किते है, सुत्ता किते हुंदा ते दुनिया कोई होर ही बनाई हुंदी। इतना मन चंचल है, बिजली नालों भी चंचल है, इहदी गति बड़ी तेज है, ओह होर किसे तरीके नाल नहीं पकड़िया जाएगा, गुरु दे शब्द द्वारा इस सिमरन द्वारा ही पकड़िया जाएगा। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सिमरन करदे ऐसी अवस्था आ जाएगी कि मन ना जे मन नूं कहो भी जा तां भी नहीं जाएगा। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि मन रस चाहुंदा है, रसां विच पिया होया, जदों इहनूं सिमरन दा सच्चा रस मिल गया, नाम दा रस मिल गया। बाबा फरीद जी कहिंदे ने फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माख्यो माझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन। कहिंदे शक्कर मिठी है, खंड मिठी है, गुड़ मिठा है, शहद मिठा है, परंतु परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं कोई चीज मिठी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै,

0: कोई विरला जो गुरमुख अवस्था नु पहुंच गया जितने इतनी कमाई कीती है। महाराजा हीरा सिंह नाभा कहंदा है कि मेरे मन दी ओह ख्वाहिश भी पूरी होगी जो मैं कहंदे मेरे इच्छा सी कहंदे मैं इन्हां दे विचों ही गुरु नानक दे दर्शन कीते हन इन्हां दा रोम रोम कहंदे जो है मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा प्रतीत कीता है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। रोम रोम बाबा सुंदर सिंह नूं कई गुरमुखां ने सिखां ने बेनती कीती कि कोई नाम दी अवस्था रोम रोम भी कोई अवस्था हुंदी है। महापुरशां ने अपनी ढो कंध दे नाल लगा ली ते सिखां नूं सिंघां नूं कहा वी तुसीं कंध दे नाल कन्न ला के सुणो। जदों ओह कन्न दे नाल कंध अपना कंध दे नाल कन्न लाउंदे हन तां उहनां नूं की आवाज़ आउंदी है उस दे विचों वी वाह वाह। उन्होंने ढो लाई हुई है क्रोम रोम दे विच्चों ते कंध दे विच्चों भी उन्हां नूं फिर वाहिगुरु वाहिगुरु दी आवाज़ां आउंदियां। बाबा सुंदर सिंह जी आंदे जीवन दी ऐसी कथा आउंदी है। सो गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे सिर्फ ये नहीं बोल के ही ये अवस्था है। इहदा मतलब ये नहीं समझ लेना कि अपने बोलना ही नहीं है। बहुत सारे सोचते हैं बई वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना पता नहीं इसका फल घट है ते फिर कोई अवस्था जाके नहीं। सो भावें गुरमुखां नूं जवान नाल भी जपदे हन बिना बोलियां तों भी उन्हां दा अपने आप ही नाम जप हुंदा है। जिवें हुण आपां कोशिश करो बैठो अखां मीट के बैठे हां ते अपने अंदर ही कंठ हिरदे नाभी दे विच वाहिगुरु वाहिगुरु जां मुख दे विच अपने मुख दे विच हौली हौली वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु अपने अंदर कोशिश करो। फिर जे असीं साडे अंदर जप हुंदा होवेगा फिर तो साडा मन टिक जाएगा नहीं फिर अपना मन फुरने फुरने करेगा ते फिर जी करेगा मैं उठ पवां जां मन टिकदा नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। जे असीं बैठ के अखां मीट के अपने अंदर सिमरन होवेगा फिर मन टिक जाएगा। बोलो
1: सतनाम।
0: जे सिमरन नहीं होवेगा फिर नहीं मन ने टिकना। सो अखां मीट के पंज मिनट इस तरह नाम जप के देखो कि अपने आप जप हुंदा है कि साडे रोम रोम दे विचों कोई आउंदी है अब साडा सिर दा कोई श्वास रुकदे हन

और बाणी सुनाई जिथे एदे तन दा कोड कटिया गया मन दा भी कोड कटिया गया। भाई बाणे दे चरण पकड़ दे मेरे लई तां तू रब बन के आए जिसने मेरा परलोक भी ते लोक भी सवार दिता है। मेरा क्या जीवन सी जे तू ना मिलदा पता नहीं की हाल होंदा। हुण कृपा कर जिस गुरु ने तेरिया चोलियां भरिया हन उस गुरु दे मैनू भी दीदार करा दे। मेरिया अखां तरस दईयां हन मेरा भी जीवन सफल कर दे। भाई पाने ने जदों इस साकत पुरश दा प्यार वेख्या समझ गए कि इसकी सुती हुई सुरत जाग उठी है। इसने सच नूं पछाण लिया ता अलाहाबाद तो फिर श्री हरिमंदर साहब विखे अकाल तखत साहब विखे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक विराजमान हन। संगतां जुड़ियां हुईयां हन। भाई पाना अते ए पुरश आके जदों चरणा ते नमस्कार कीती नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो देते। ज्यों ज्यों चरणा नूं लिपटदा अंदर दा शीशा साफ हो रहे। हजूर ने बख्शिश दे घर विच आके आख्या जाओ भाई तुसी निहाल निहाल निहाल होयो ता इस नूं लंगर दी सेवा दे दित्ती। और सारा जीवन ए पुरख लंगर दी सेवा करदिया गुरु की खुशियां मानदिया अपना लोक परलोक सवार गया। तो हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं भाई पुन दान जो बीज दे जेड़े हंकार करके बीज दें वो तो धर्म राज कोल जाने ते जेड़े तन मन धन गुरु का समझ के बीज बो रहे हैं वो फिर गुरु कदे उन्हां नूं धर्म राज दे वश नहीं पावेगा। वो अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लीन

अखर पढ़ प्रतीत कर, होय विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच, बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोबिंद संपूर्णो पत पत लिखिया, अंत ना पावे भगत हेत प्रगास कर, होय दयाल मिल गल लावे, संत अनंत ना भेद गणावे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि संतां विच उस अनंत परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, पर यह भी याद रखना संत ओ जिन्हां दे जीवन भगत जयदेव वर्गे हैं।

जन को पूर्ण दीजे हो बल बल जाओ और मैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आस

और सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी सार संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियों अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां सी शरीर

करके मनाने भाई संत चले गए अग्ञानी पुरशा ना भी संत चले गए ज्ञान इन्ने साल हो गए अज दास अखबार च पढ़ रहा सी पंजी साल हो गए शायद पंजीवी बरसी है कौन कहिंदा महापुरश चले गए महापुरश तो हाजर नाजर बैठे ने बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है अन्ना जे ना मन्ने अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं उत्थे की दलील देईए दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा नंद सिंह वर्गे बाबा इस तों अगे चलो बाबा महा हरनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरश उन्हां वर्गे बाबा ईश सिंह जी नानसर वाले महापुरश इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध सिंह जी बड़ी मुश्किल है दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामन चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है संसार ते पानी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है सारे तरह ना कोई होया ते ना किसे होना मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए तेरे ज्ञानी जग

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नूं पकड़दा है। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक बारी

दसो तुहानू किन्ना सोना दें दूसरियां नू भी थोड़ा सोना दिता है तुहानू मैं ज्यादा सोना देंगा क्योंकि सेठ दे मन विच अहंकार है इस गल का माण है कि मैं बड़ा वड्डा धनी हां कहन लगा नामदेव दसो तुहानू किन्ना सोना दें नामदेव जी मुस्कुरा पे ते समझ गए ये मन

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए, जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पे है तुलसीदास जी दे उते राम लिखे है, ते सेठ ने हसदिया है।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे

ओदे नाम करके ने। ए दान पुन ओदे नाम करके है, फिर नाम दे बराबर कोई किस तरह हो सकता है। इस वास्ते के है, ए भाई उस परमेश्वर का नाम जप, ओदा सिमरन कर।